0: বাতসালিয়া পোখরা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখরা, ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-0611।
1: मम्मी गर्मी भयो के चिसो पिउन पिउनलाई चिसो उठाउ हर्लिक्स
2: गर्मीमा नयाँ क्विक
1: रिफ्रेशमेन्ट बार न्युट्रिसन मिक्स
2: चिसो हर्लिक्स।

0: বাতসালিয়া পোখরা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখরা, ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-06-11।
1: ओहो नाचर बे कति छाब डिजाइन बे मारे खाना खिनानी खनि तोला
2: खनाई दिवा नाचर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुलारी तोला
1: ए नई छाबा मार दोकान पो मोना नई प्रेसलाई नि च्याबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस टिग्री हार तान चनै तो हो नि जगह मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छ्याबा कोपिन ओछे
2: हजुर तिमी झोको लाइनि छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिसा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट नलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जगह मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुताय रवा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा दिलन चन्न यामो
1: तोय मिल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान निभिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउ है रूपाकोट।

रॉयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला रातिको 8 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।
5: 93.4
6: एडमिशन ओपन पोखरा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट PCM एफिलिएटेड टू पोखरा यूनिवर्सिटी 24 इयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस इन मैनेजमेंट बैचलर प्रोग्राम 4 इयर्स प्रोग्राम ऑफ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA 4 इयर्स ऑफ IT प्रोग्राम बैचलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BCSIT 4 इयर्स प्रोग्राम ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस BVA फाइनेंस फर्म्स आर अवेलेबल
5: 93.4
6: Admission open. Pokhara College of Management, PCM, affiliated to Pokhara University. 24 years of academic excellence in

कोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 अब तपाई रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 लन्डनबाट प्रसारण हुने समाचारमूलक प्रस्तुति बीबीसी नेपाली सेवा सुन्नुहुन्छ।

0: Pare Tokyo Nagari Pokhara ma Metro City Hospital Prali Sirjana Chok Pokhara le bibhinna kism ka bisheshagya chikitsak sewar ko upachar lyaeko jankari garaudachhau.
1: Hamra sewa haru
0: heart jodne nasa tatha merudanda rog
1: general surgery sabai prakar ka operation sewa
0: mirgaula tatha mutra rog uro surgery
1: pet chhati mutu thyroid tatha madhumeha rog
0: neuro surgery sewa
1: bal rog
0: nak kan tatha ghati rog
1: manasik tatha snayu rog
0: prasuti tatha stri rog
1: chhala yon tatha kushta rog
0: netra rog
1: dant tatha mukh rog
0: cancer rog durbin ra laser pravidhi prayog gari garine bibhinna operation haru अत्याधुनिक माइक्रो डिफ्राइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाटी रोग को ऑपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घंटा एम्बुलेंस इमरजेंसी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा संपन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्कैन सेवा
1: वीडियो एक्सरे इकोकार्डियोग्राफी
0: इंडोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी यूरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बॉडी चेकअप हेल्थ पैकेज
1: मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्राली पोखरा 8 सृजना चौक कास्की
0: फोन 061 572 648 572 849